0: सम्झनुहोस् सुन्दर अटो ओक्स इमाहा सोरुम दुलेगौडा बजार तनहुँ।
1: सम्पर्क 0654142121 मोबाइल 98565391।
0: प्रबन्ध निर्देशक आनन्द सुन्दर श्रेष्ठ।
2: Yes, Yamaha.

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु। ला
0: किन्दे होला।